0: for the trip? Gifts? Passport?
1: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
1: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
4: T's and C's apply.
5: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
7: खुद से भी ज्यादा।
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
7: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
5: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809,
8: BT 394. ब्रांड्स दैट यूज Radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
9: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
1: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
0: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
1: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410.
2: Saho Travel. Auto protected.
3: This August, witness the UK television premiere of the blockbuster event everyone's been waiting for. Starring Ranveer Singh, Akshay Khanna, R. Madhavan and Sanjay Dutt.
4: Rehman Dakes ki divi maut. बड़ी कसाई नुमा होती है।
3: डोंट मिस द यूके टेलीविजन प्रीमियर ऑफ धुरंधर।
5: अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं।
3: Exclusively on Utsav Gold.
2: Sky Channel 715, Virgin Media 801 and EE393.
6: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

जात जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

नाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
2: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
3: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
1: ਦਿਸ 26 June ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर travel mantra?
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
10: जगदात्री,
9: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
10: माला ले आना, लाइया जी।
9: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
11: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
9: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
12: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स।

0: किशोर कुमार की आवाज में आर डी बर्मन का ये शानदार गाना जो जब आया था तब भी सबका फेवरेट था और आज भी सबका फेवरेट है, और आज के मौसम के हिसाब से तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। बाहर आज ऐसा ही लग रहा है जैसे कि सावन ही गिर रहा हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही है, जो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। ठंडक फील होती है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और आज वैसा ही एहसास हो रहा है। तो आज जो बारिश हो रही है काफी अच्छी लग रही है हमें भी, और जो पेड़ पौधे हैं घास उनको भी, और आप सबको भी पसंद आ रही है। तो बिल्कुल इस तरह से आपने ये गीत सुना, और एक और पहला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर, एक और अपने जमाने की सुपर ट्यून बॉबी, जिससे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने अपना डेब्यू किया था। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। ये है लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, जहां पर ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक आपका साथ निभाऊंगी और सुनवाऊंगी आपको एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक्स। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं, मजे में है, खुश हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, और जहां कहीं पर भी हैं हमारा साथ दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिल सकेंगे 125 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा। और आपको याद दिला दे कि आज आखिरी दिन है फायदा उठाने का, यानी कि आज आप अगर 75 pound का वाउचर जीतना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है जब आप 1000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करवाएंगे, या फिर 1 gram गोल्ड कॉइन मिल सकता है आपको जब आप 2000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो भाई आज फ्रांस और स्वीडन के बीच में एक बड़ा मैच होने वाला है, और आपको याद दिला दें कि आप अपना 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, और ये सब हो सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 gram 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 gram 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street LE12JU या Rowlett Hill LE54UN।
3: Big deals, big savings while stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
4: Radio partner Leica Radio.
8: Sita aaj Lanka khud chalane aayi.
9: This July, witness the rise of a new force.
8: Hi boys.
10: What's up?
9: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
8: Jisse tumse baat karni hai. Rok lo.
9: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event. Alpha in cinemas from the 3rd of July.
11: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-633 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
12: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉन स्टॉप

0: Welcome to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 ZTV HD Bird. Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म त्रिशूल से लिया था ये गाना, जो 1978 में आई थी। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और हमारे ढेरों साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं जिन पर एक नजर जरूर डाली जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपको बताती चलूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और अब समय है आज की ताजा समाचारों को सुनने
3: का। मनोरंजन with रवि शर्मा।
0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है, भारत के नए आर्मी चीफ बन गए हैं जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ ने आज 30 जून को भारत के नए सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। वो भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। जनरल सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है। जनरल द्विवेदी सेना में 40 साल से ज्यादा की सर्विस देने के बाद रिटायर हुए हैं। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए खड़गवासला के छात्र रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन लिया था। उन्हें दिसंबर 1986 आर्मर्ड कोर में कमीशन मिला था और सेना प्रमुख के पद का कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने थल सेना उप प्रमुख के रूप में भी काम किया है। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल रिफाइनरी में आग लगी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मदिनीपुर जिले में हल्दिया रिफाइनरी की नेफ्था ले जाने वाली पाइपलाइन में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। उधर दिल्ली कैबिनेट ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी और अप्रैल 2028 से पेट्रोल बाइक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। ईरान की ओर से मिल रही लगातार धमकियों के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारत आने वाले अधिकांश जहाजों ने अपनी ट्रैकिंग प्रणाली बंद कर दी है, यानी कि वो गो डार्क हो गए हैं। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत अगले साल तक 300 गीगावाट बिजली क्षमता तैयार कर रहा है। उधर दुनिया से खबर आ रही है कि पिछले हफ्ते पूरे यूरोप में गर्मी की लहर थी, जिससे कई लोग प्रभावित हुए और इस गर्मी ने 1300 से ज्यादा अधिक लोगों की जान अब तक ले ली है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में भी जून का महीना सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया और सारे रिकॉर्ड टूट गए तापमान को देखते हुए जून के। फुटबॉल वर्ल्ड कप से खबर आ रही है कि बताएं आपको कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 नॉकआउट के चरण मुकाबले जो शुरू होने वाले हैं, जिसके तहत कल होने वाले इंग्लैंड बनाम काको मैच के लिए टीमें अटलांटा पहुंच चुकी हैं। आई थिंक ये मैच हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो उलटफेर हो रहा है मैच में, फीफा वर्ल्ड कप का जो अंतिम 32 के मुकाबले में जो मोरक्को और नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया है, दोनों के बीच मैच 1-1 से बराबर रहा है, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ है। मोरक्को ने मैच के अधिकांश हिस्से में अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन नीदरलैंड के बार्ट फेयरब्रुगेन की शानदार गोलकीपिंग ने उन्हें बढ़त लेने से रोके रखा है। नीदरलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया। नीदरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 3 मौके गवाए, जिसके बाद इस्माइल साइबरी ने निर्णायक गोल मारकर मोरक्को को 3-2 की जीत दिलाई और अब मोरक्को का सामना 4 जुलाई को ह्यूस्टन में अंतिम 16 के मुकाबले में कनाडा से होगा। और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है और इस बार के एशियन गेम्स सितंबर महीने में जापान में होने वाले हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस बार मौजूदा चैंपियन के तौर पर खेलेगी। पिछली बार चाइना में हुए एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। और टीम में जो जिन सदस्यों को जगह मिली है उसमें है हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंदाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जैमिमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेट कीपर, जी कमलिनी विकेट कीपर, भारती फुलमाली, श्रीचरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और नंदिनी शर्मा। यही थे आज के प्रमुख समाचार। आज के प्रमुख समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: सुनील दत्त और नूतन की फिल्म मिलन से था ये गाना, जिसमें मुकेश जी और लता जी की आवाजें थी। और भाई आजकल फीफा वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है और सभी बड़े इंटरेस्ट के साथ मैच देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट चरण के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जिसके तहत कल मैच है इंग्लैंड और कांगो के बीच में, और उसके लिए टीमें ऑलरेडी अटलांटा पहुंच चुकी हैं। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, किसके हाथ में आएगा वर्ल्ड कप? सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल काफी उलट फेर हो रहा है और बहुत अच्छी अच्छी टीम्स बाहर ऑलरेडी हो चुकी हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: वैसे मैं तो क्रिकेट प्रेमी हूँ, मुझे फुटबॉल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत क्रेज है फुटबॉल का और हमारे लिसनर्स भी बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो देखा जाएगा, आप बता सकते हैं कि कौन सी है आपकी फेवरेट टीम और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड तो होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड कप हाथ में उठा सकती है? लेकिन हमारे बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं, साथ ही साथ दे रहे हैं। थैंक यू अर्जुन जी, आप हमारे साथ हैं हमेशा ही। थैंक यू शरफून, आप आज घर पर हैं, और घर पर हैं तो आपकी मेरी कंपनी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। वियाना में अनिल सोनी जी हमारे साथ हैं, हेतल सोलंकी जुड़ चुके हैं, अरुणा जी थैंक यू गीतों को एंजॉय कर रही हैं, थैंक यू विजय गुनोवा जी, थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी। कहते हैं जब रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है तो पकौड़े भी होने चाहिए इस मौसम में। सही कहा नरेंद्र जी, बारिश के मौसम में पता नहीं क्यों चाय पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे चाय पकौड़े ही क्यों, मुझे तो ये लगता है कि कोई भी मौसम हो, हमारी जो देसी डिशेज हैं, देसी जो खाना है, इतना स्वादिष्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चर की अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब इंसान परहेज करे भी तो कैसे। खाना इतना स्वादिष्ट है कि नाना करते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं और बस फिर यही रहता है वजन बढ़ गया, वजन कैसे कम होगा, यही ख्याल आता है। एनीवेज, अगर आप बना रहे हैं इस मौसम में चाय पकौड़े तो जरूर उनका लुत्फ उठाइए और एक एक्स्ट्रा पकौड़ा मेरी ओर से भी खाइए। थैंक यू तोची जी, राजीव पटेल जी, जयंतन मीना, मृदु जी, प्रज्ञा काम पर हैं लेकिन हमारा साथ दे रही हैं, रक्षा पटेल जी थैंक यू, एंड ऑफकोर्स हमारे गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं, थैंक यू, स्वागत है आपका। शेखर आनंद जी, हरीश खत्री जी, साहिर जी, रमीला, सभी जो साथ दे रही हैं हमारे शो में, सभी का स्वागत है। और अगला गीत मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: This is Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो हॉलीडे भी जा सकते हैं, अगर दुबई जाना चाहते हैं तो साउथॉल ट्रेवल से बात कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए ऑन 02085748410 पर। ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है और अब दुबई से रेस्ट्रिक्शंस भी हट चुके हैं, तो क्यों ना दुबई घूमने का प्रोग्राम बनाइए और साउथॉल ट्रेवल से कांटेक्ट कीजिए।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: We hit
1: Leica Radio. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
3: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARERAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, like our radio.
3: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
4: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
5: OMG!
4: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
5: Murder Mystery!
4: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
9: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
10: This August, witness the UK television premiere of the blockbuster event everyone's been waiting for. Starring Ranveer Singh, Akshay Khanna, R. Madhavan and Sanjay Dutt.
11: Rehman Dakes ki divi maut badi kasai numa hoti hai.
10: Don't miss the UK television premiere of Dhurandhar.
12: Agar tum logon ke patake khatam ho gaye to main dhamaka shuru karun.
10: Exclusively on Utsav Gold.
13: Sky Channel 715, Virgin Media 801 and EE393.
1: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
14: Leica Radio.
15: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com.
16: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: लीजिए, साकू जोशी भी हमारे साथ हैं और कहती हैं हम भी आपके गीतों को एंजॉय कर रहे हैं. तो चलिए, ये गाना हमने आपको डेडिकेट किया.
1: ये है लाइका रेडियो. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टका.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 97.7 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026.
9: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Welcome to the jungle.
11: Film? Bilkul fake.
10: हमारी फिल्म आर्मी वाली
12: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
11: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
10: और स्टार कास्ट है
11: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू. स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
13: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
11: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
14: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
15: मैं किस लिए फिल्म में.
16: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
17: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
16: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
17: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
16: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
17: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
16: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.

आज है 30 जून, जून महीने का आखिरी दिन, 11:03 हुए हैं और ये समय निर्धारित है चिंतन के लिए। चिंतन यानी कि आज का विचार, जिसे आप रवि जी के साथ सुनते हैं, लेकिन आजकल वो छुट्टियों पर हैं, इसलिए उनकी जगह मैं ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चिंतन की और सुनाती हूँ आपको एक कहानी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है। और ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है आनंद। आनंद जो था बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनार था, पर दुख की बात यह थी कि पिता का साया बचपन में ही सर से उठ गया था, इसलिए उसकी माँ सावित्री सिलाई कढ़ाई करके दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाल पोस रही थी और ऐसे ही उसने आनंद को बड़ा किया। आनंद का एक ही सपना था, एक बड़ा सिविल सर्वेंट बनना, IAS ऑफिसर बनना और अपनी माँ को दुनिया का हर सुख हर खुशी देना, क्योंकि उसने देखा था अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए, तिल तिल अपनी खुशियों को मारते हुए, अपने मन को मारते हुए। इसलिए वो हमेशा यही सोचता था कि मैं एक ऊंचे पद पर जाऊंगा और मेरी माँ ने जितने भी दुख उठाए हैं, एक भी दुख तब मैं अपनी माँ को नहीं होने दूंगा। और इसी अपने प्रण को पूरा करने के लिए आनंद ने रात दिन एक कर दिए थे। IAS की परीक्षा की तैयारी में और मेहनत इतनी की कि पहले दो प्रयासों में वो इंटरव्यू तक भी पहुंच गया, लेकिन कुछ नंबरों से रह गया। और जब तीसरा साल आया तो उसे लगा कि अब तो मैं जरूर इसको क्लियर कर ही लूंगा, और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। रिजल्ट वाले दिन का इंतजार बेसब्री से आनंद को था, और जब रिजल्ट आया तो उसने कांपते हुए हाथों से लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढा। उसने ऊपर से नीचे तक 3 बार लिस्ट देखी, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उम्र की सीमा खत्म हो चुकी थी, पैसे खत्म हो चुके थे और अब उसकी उम्मीदें भी। वो कमरे का दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा उसने अपनी माँ के सालों के बलिदान को मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ पूरी तरह से बिगड़ गया और जो सपना वो सालों से देख रहा था, वो सपना पूरा हो ही नहीं पाएगा। और बस उसे लग रहा था कि अब मैं क्या कर दूं, मैं कैसे करूं, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। बहुत हताश परेशान हो चुका था आनंद, और ये सब सोच ही रहा था तभी अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला। माँ हाथ में पानी का ग्लास लेकर अंदर आई और आनंद ने रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए, कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। माँ आपकी सालों की मेहनत, आपके फटे हुए हाथ, पुराने कपड़े, जिनको मैं बदलने का सपना लिए चल रहा था, कुछ भी नहीं हो पाएगा माँ, सब बर्बाद हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन बिल्कुल विफल है, बेमाने है। सावित्री ने आनंद के सिर पर हाथ रखा, उसे उठाया, आंसू पोंछे और बड़े प्यार से गले लगाया। माँ बोली, बेटा मैंने तुझे अफसर बनते हुए देखने के लिए पैदा नहीं किया था, इसलिए नहीं पाला था कि तू बड़ा होके अफसर बन जाएगा। जब तक तू सुरक्षित है, मेरा सब कुछ सलामत है। कहते हैं ना, बात तब बिगड़ती है जब इंसान अंदर से हार मान ले। तू मेरा बेटा है, मेरी सबसे बड़ी जीत तो तू खुद है। माँ के इन शब्दों ने और उसके निस्वार्थ प्यार ने आनंद को अंदर

सारे दर्द को एक अलग ही एनर्जी ऊर्जा में बदल दिया और उसे समझ आया कि जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा की मोहताज नहीं होती है। माँ ने उसे बहुत समझाया, उसने रोना बंद किया और एक नई शुरुआत की। उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसको पढ़ाने का उसका जो पढ़ाने का तरीका था और उसका जो एक्सपीरियंस था वो इतना शानदार था कि देखते ही देखते उसका छोटा सा कोचिंग सेंटर एक बड़े संस्थान में बदल गया और अगले कुछ सालों में आनंद ने सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर अफसर बना दिया था। और एक दिन बड़े समारोह में जहां आनंद को शिक्षा के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा था तो उसने माइक पर कहा कि जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टूटा था और जब मुझे लगा था कि सब कुछ बिगड़ गया था उस दिन मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के साथ और उसी की वजह से हूँ। तो ये अवार्ड आज लेने का हकदार मैं नहीं बल्कि मेरी माँ है। कहते हैं ना, अपनों का साथ ही हमें दोबारा जीना सिखाता है। कभी कभी हम किसी एक नाकामी को अपनी जिंदगी का अंत मान लेते हैं लेकिन जब तक हमारे माता पिता या हमारे सच्चे शुभ चिंतक हमारे साथ हैं तब तक यकीन मानिए कुछ भी बर्बाद नहीं होता। उनकी मोहब्बत और हमारा हौसला बिगड़ी हुई बात बना देता है और जीवन को एक खूबसूरत मोड़ भी दे सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए।

0: राजेश रोशन के म्यूजिक पर जुर्म फिल्म से था ये गाना जो 1990 में आई थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। वैसे ये एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच भी है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई बात बिगड़ जाती है या कोई संकट आ जाता है या जब राहें धुंधली हो जाती हैं। तब दोस्त पीछे हट जाते हैं, घर वाले पीछे हट जाते हैं और खुद पर भी भरोसा उठने लगता है। और ऐसे ही एक अकेले पल में, निराशा के पल में, जब कोई आकर धीरे से आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो टूटते हुए हौसलों को मानो एक नया जीवन मिल जाता है। और ये कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका सच्चा दोस्त हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, या फिर आपके भीतर छुपा हुआ खुद का आत्मविश्वास। जब तक ये साथ है ना, तब तक आपकी बात भी नहीं बिगड़ सकती और आपको कोई हरा भी नहीं सकता। देखिए, किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि जब राहें धुंधली हो जाएं, जब अपने भी पीछे हट जाएं, जब हर कोशिश नाकाम लगे और हर मंजिल एक ख्वाब लगे, तुम रुकना मत, तुम थकना मत, किसी भी बिगड़ी बात से डरना मत। माना आज अंधेरा भारी है, पर देखो अभी सांसें जारी हैं। कोई तो होगा इस दुनिया में जो खड़ा रहेगा तन्हाई में, जो थाम के हाथ ये कह देगा, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ। यही था आज का चिंतन और यही था आज के चिंतन का मैसेज, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। थैंक यू ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू शर्फून अर्जुन जी, थैंक यू राजेश जी, कहते हैं चिंतन बहुत ही अच्छा था। और आपने लिखा है कि कभी कभी हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो मायने नहीं रखती। आपके प्रियजन का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद आपको चुनौतियों से उभरने और नए रास्ते खोजने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू शुमिला मंगर, दिव्या जी, राजकुमार जी, आपको चिंतन पसंद आया। थैंक यू शेखर आनंद जी, आपका भी यही कहना है कि नेवर गिव अप, सब कुछ अच्छा होता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भारत में सत्यनारायण सैनी हमारे साथ है, रागिनी जी, रंजन जी, मृदु जी, जासू जी, राजीव पटेल, बुशी जी, जगदीश जी बुशी से, रोहित जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। और चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अब सुन लेते हैं आशा जी की आवाज में एक रोमांटिक सा गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि आज £1 आपको देगा 125 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको SBI branch online या फिर उनके Yono app के थ्रू करवाना होगा। लेकिन आज आखिरी दिन है £75 का वाउचर जीतने का जब आप ट्रांसफर करते हैं £1000 या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जीतने का जब आप ट्रांसफर करते हैं £2000। तो जल्दी कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आपको बताते चलें कि आज मैच होने वाला है किसके बीच में। यस, आज फ्रांस और स्वीडन की टीम्स मैच खेलने वाली हैं फीफा वर्ल्ड कप का। लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिए 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, और ये सब आपको मिल सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
4: OMG!
3: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
4: Murder Mystery!
3: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर ये गाना नासिर हुसैन की फिल्म से लिया था, और नासिर हुसैन की फिल्म थी तो उसमें उनकी फेवरेट हीरोइन तो होंगी ही आशा पारेख, और साथ में थे दिलीप कुमार। भावना जी थैंक यू। वंदना गुटका जासू जी आप कहती हैं कि ये गाना हमारे नाम कीजिए, मैंने बिल्कुल आपके नाम किया। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। जैस्मिन जी स्वागत है आपका इस शो में, और मनोज जी क्रॉयटन में सुन रहे हैं हमारी भारतीय दीदी को चिंतन अच्छा लगा। कल्पना जी थैंक यू। रानी जी इस्लाव से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड भावना जी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और आपने बिल्कुल सही लिखा है, आजकल का ज़माना है कि नेकी कर और दरिया में डाल। और आजकल बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के दोस्त होते हैं, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपका भी ज़रूर एक्सपीरियंस रहा होगा कि दुनिया बहुत मतलबी है। अगर किसी का किसी से कोई मतलब सधता है तो फौरन दोस्ती गाढ़ी हो जाती है, और जब मतलब निकल जाता है तो तू कौन मैं कौन, तू कहाँ मैं कहाँ ऐसा हो जाता है। और ऐसे लोग बहुत हैं जो मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, और मैंने उनको एक नाम दिया है कि ये मतलब के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त नहीं हैं। सच्चा दोस्त तो एक या दो ही होता है जो जीवन भर आपके साथ रहता है, आपके चेहरे पर परेशानी आते हुए वो पहचान जाता है कि आप किस बात से परेशान हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बहुत कम दो या तीन ही ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मेरी बात करने से पहले समझ जाते हैं कि ये बात ज़रूर मुझे परेशान करेगी और मुझे किसने परेशान किया। एंड आई एम सो लकी कि आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जैसे मेरे पास हैं, अच्छे सच्चे दोस्त। तो बस यही दुनिया है, क्या किया जाए, बस जीते रहिए, खुश रहिए, और ऐसी ऐसी बातों को जो आपको परेशान करे बस इग्नोर करते चलिए। अगर सबके बारे में सोचने लगे ना तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब लोग आपको ज़रूरत के दोस्त बनाते हैं तो आप भी उनके ज़रूरत के दोस्त बन जाइए, क्यों उनसे सच में दिल लगाना है ना। अगर किसी से आप अच्छे से दिल लगा लेते हैं और फिर जब धोखा मिलता है तो बहुत दुख होता है, इसलिए संभल के ध्यान से। आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हो, देखिए अब लंच टाइम आने वाला है और मुझे लगता है हमारे साथी ऑलरेडी किचन में जा चुके हैं, क्योंकि भाई लंच तो 12:30-12 बजे खाना होता है, लेकिन प्रिपरेशन तो पहले से करनी पड़ती है। और हमारा जो खाना है, इंडियन जो फूड है, उसको खाने में तो 2-3 और मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में और बनाने में कितना समय लगता है ये वो ही जाने जो कुकिंग करते हैं। बताइए सही कह रही हूँ कि नहीं। Feel good track.
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a extra podcast update. तो आपको याद दिलाते चलें कि अगर गीतों के साथ साथ आपको बातों में भी इंटरेस्ट है तो आपके लिए है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट। और इस बार का जो एपिसोड है उसमें जो टाइटल है उसका है ट्रेडिशंस एंड ताबूज, और इसे रेडियो वाली ने होस्ट किया है जो हमारे लाइका रेडियो की प्रेजेंटर है, इवनिंग शो करती हैं 7 से 10, बड़े अच्छे गाने बजाती हैं, ज़रूर सुनिए उन्हें। और अब आपको बता दूं कि ये लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजोन पर, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर आप अवेलेबल है। कहीं पर भी जाकर आप, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
2: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Like our radio.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
6: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
5: Exclusive radio partner, Like Our
3: Radio.
7: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
8: This July, witness the rise of a new force.
9: Hi boys.
10: What's up?
8: Yash Raj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shadvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
7: Mujhe sirf tumse baat karni hai. Rok lo.
8: Alpha. Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event. Alpha, in cinemas from the 3rd of July.
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simzy before we left London.
11: Simzy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
15: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
15: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
16: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel. Prime location,
15: high appreciation
16: in Dubai.
17: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
18: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
17: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
19: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरू से मंगवाओ, कॉल कीजिए 01163325100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
2: ये है लाइका गो.

0: क्या प्यारा सा गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज में। साजन फिल्म से लिया था और इस गाने में माधुरी थी जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया था। और आनंद तोमर हमारे साथ जुड़े हैं, जय सियाराम कहते हैं तो आपको भी जय श्री राम। एंड भावना, आपने मैसेज लिखा है और ये मैसेज थोड़ा लंबा है जिसे पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जरूर मैं आपके मैसेज को पढ़ूंगी। लेकिन मधु जी कहती है कि ऋतु आपने तो बिल्कुल सही कहा है कि कुकिंग करने में कितना टाइम जाता है, ये उनको कैसे समझ में आए जिनका कुकिंग से कोई वास्ता ही नहीं है, जो कभी किचन में झांकते ही नहीं है जो सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं कि खाना ले आओ, चाय ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ तो उन लोगों को भी एहसास दिलाना चाहिए कि भैया ये सिर्फ जो बोल देते हैं ना, सिर्फ बोलना बहुत आसान है, अंदर जाओ किचन में बना के देखो और उसके बाद जो क्लीनिंग और ये सब चीजें होती है उसमें कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम का काम है। कभी कभी मुझे लगता है कि खाना बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल बनाओ जो क्विक बन जाए और खा लो, क्योंकि 5 मिनट भी नहीं लगते खाना खाने में और खाने के बाद सब खत्म, स्वाद भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो क्यों इतनी मेहनत करके घंटा भर तक यू नो स्वादिष्ट खाना बनाना, खड़े रहना, ये करना, वो करना, फटाफट बनाओ और खा के छुट्टी करो और कभी बहुत अच्छा खाना है तो बाहर रेस्टोरेंट्स में इतना बढ़िया मिलता है, कभी कभार वहां जाकर खाओ। मतलब ये मेरा सोचना है।
1: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on the breakfast show, where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. like a gold and like a radio Midlands.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टका।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LEICA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 97.8 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
3: Leica Radio.
2: This is Leica Radio.
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 1499, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 1199, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
5: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: This summer, don't just step out, stand out. The Janaan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janaan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janaan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
12: Welcome to the jungle.
13: Film बिल्कुल fake.
12: हमारी film army वाली.
14: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
13: Danger एकदम real और survival skills zero.
12: और star cast है.
13: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
15: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
13: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
16: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
17: मैं किस लिए फिल्म में?
18: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: New hits on Leica Radio.

0: ब्यूटीफुल गाना और म्यूजिक से तो समझ आ ही गया है कि ये ओपी नैयर के अलावा किसी और का म्यूजिक हो ही नहीं सकता। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में ये गाना हमारी नैना शाह जी को बेहद पसंद है। नैना शाह, ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। और इसके अलावा ढेरों मैसेजेस मिल रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, जरूर पढ़ूंगी। गगन जी, आपका भी मैसेज आया है, लेकिन नरेंद्र पांचाल जी कहते हैं कि ऋतु, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि शादी के बाद हम लेडीज को ही क्यों खाना बनाना पड़ता है, आपको खिलाना पड़ता है बना के। तो मैंने कहा कि सारी दुनिया में कैदियों को, प्रिजनर्स को जेलर ही खाना खिलाता है, हम तो आपके कैदी हैं और आप हमारे जेलर हैं। अब बताइए इस बात को कितने लोग मानते हैं। ये तो नरेंद्र पांचाल जी का सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन क्या ये बात सच है? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। लेकिन ये मैसेज मुझे मिला है, मैं बात करती हूँ बाद में।
1: Across the Midlands, this is Leica Radio on DAB and online. A part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. Sir Keir Starmer has announced road and energy projects will be scrapped to help fund a £15 billion boost for defence spending. The government's setting out an investment plan, which has been much delayed. Money will go towards unmanned planes and boats, as well as long-range missiles. The Prime Minister says he's taken necessary choices, but issued a warning to the military.
3: In the past, defence spending has sometimes been seen as a bottomless pit. People see the money going in, but they don't feel the benefits. So this time must be different. We can't just spend more. We've got to spend better.
2: A woman whose daughter died because of maternity failings has described the recommendations from a new review as insane. Emily Barley says Baroness Amos's proposal for a maternity commissioner for England would concentrate power dangerously in the hands of one person. There's fury in Venezuela over the lack of access to money and tools for helping with rescue efforts after last week's earthquakes. More than 1,700 people are confirmed dead after the back-to-back shocks. Elias Elia is a lawyer volunteering with the search effort. He says what he's seen will never leave him.
4: I mean, I get home, I take a shower, and I still hear screams, I still smell this smell, you know. Even I took 10 showers in a row, I'm feeling the same.
2: A man's been charged with attempted murder following disorder in Belfast earlier this month. The 29-year-old's also accused of riot and arson after homes and a glider bus were set on fire. Asylum seekers are going to be told they'll have to pay up to £10,000 towards the cost of their accommodation. The Home Secretary wants them to repay money once they start earning before they can be eligible for settled status. And she may have won the title 7 times, but Serena Williams says she'll be jittery when she returns to Wimbledon later. The 44-year-old takes on Australia's May adjoint on the centre court as she makes her singles comeback. From Sky News, I'm AJ Walsh.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: चलिए बात करते हैं आज के मौसम की। और आज एक बार फिर से मिला जुला मौसम रहने वाला है। थिक क्लाउड रहेंगे, कभी कभार कुछ सनशाइन देखने को मिलेगी, लेकिन कभी कभार बारिश भी होगी। मौसम आज अच्छा है, प्लेजेंट है। मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्रीज तक जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्रीज रहेगा। एंड मिडलैंड्स में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्रीज के आसपास ही रहेगा।
1: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल Southall Travel 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: Leica Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica.

0: सिलसिला फिल्म से था ये गाना लता जी और किशोरदा की आवाजों में, और उससे पहले सन्यासी फिल्म का गीत जिसमें लता जी के साथ मुकेश जी गा रहे थे। और हमारे जैनुद्दीन जी आपका मैसेज आया है, कहते हैं ये गाना मुझे बहुत पसंद है, चलिए ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया और आपके बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग मैसेजेस भी मुझे मिले हैं तो मैं जरूर पढ़ूंगी। ये मैसेज मुझे मिला है गगनदीप सिंह जी आपका, आपने लिखा है कि आपको गाने पसंद आ रहे हैं, शो अच्छा लग रहा है और आप हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने बताया है कि आपने कुछ महीने पहले ही कुकिंग शुरू की है और वो भी एक्सीडेंटली ही कहूँगी हो गई है। आपने बताया है कि आपकी वाइफ एक बार आपके कैट के लिए गलत चिकन ले आई और फिर आपने उस चिकन का चिकन टिक्का बना दिया और वो बड़ा टेस्टी बना, आपकी दोनों डॉटर्स को भी पसंद आया और तब से आप रेगुलरली कुकिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट वीक में दो बार तो आप बनाते ही हैं और आपकी फैमिली और सभी लोग उसे इंजॉय करते हैं और बच्चे भी। तो आपको कुकिंग डिफिकल्ट भी नहीं लगती, लेकिन हाँ क्लीनिंग पार्ट आपको पसंद नहीं है। बट चलिए आपकी वाइफ को इतनी तो हेल्प है कि आप हफ्ते में दो बार कुकिंग कर लेते हैं और वो भी टेस्टी, तो ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी कहूँगी कि आप भी कभी कभार कुछ गलत सब्जी या चिकन खरीद लाइए और फिर आपके हस्बैंड भी थोड़ा कुछ ट्राई कर लें और शायद आपको भी हफ्ते में दो दिन कुछ ना बनाने की छुट्टी मिल जाए। हो सकता है ना ऐसा। तो थैंक यू गगनदीप जी, आपने ये हमारे साथ शेयर किया है। और हमारे शेखर जी कहते हैं कि भाई मैं सब काम करता हूँ, हूवर भी करता हूँ, क्लीनिंग भी करता हूँ, बर्तन भी करता हूँ, किचन में सब कुछ करता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मुझे लाउड आवाज में रेडियो नहीं सुनने देती। क्या बात है शेखर जी, अब आपने ऑन एयर मुझे ये बता दिया है और मैंने भी ऑन एयर अनाउंस कर दिया। अब आपको आने वाले दिनों में खाना मिलेगा या नहीं इसका इंतजाम आप कर लीजिए, क्योंकि आपने ऑन एयर ये बात मुझसे, मतलब आपने मुझे ये बात कही और मैंने ये बात ऑन एयर कह दी है। एनीवेज और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं जिनका जिक्र जरूर करूंगी, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड आपको देगा 125 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आज आखिरी दिन है उस मौके को यूज करने का, यानी कि 75 पाउंड का वाउचर आप जीत सकते हैं जब आप 1000 पाउंड ट्रांसफर करते हैं और 1 ग्राम गोल्ड कॉइन आपको मिल सकता है जब 2000 पाउंड से ज्यादा आप मनी ट्रांसफर करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहेंगी।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: ये है
3: लाइका रेडियो।
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
10: This July, witness the rise of a new force.
9: Hi boys.
10: Yash Raj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
9: Mujhe sirf tumse baat karni hai. Rok lo.
10: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event. Alpha in cinemas from the 3rd of July.
11: Teachers, tutors or educators ke liye ek special opportunity. RoboThink UK expand kar raha hai. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full-week summer camps with code Leica 10. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
12: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
13: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
14: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: नौशाद के म्यूजिक पर अपने जमाने का सुपरहिट गाना जिसमें आवाज थी रफी साहब के साथ शमशाद बेगम की। और शमशाद बेगम हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी हैं, तो उनके गाने आपको हर शो में कम से कम एक तो जरूर सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। और अब कुछ मैसेजेस पर नजर डालती हूँ। ये मैसेज रोशनी जी आपने भेजा है, रोहिणी जी ने भेजा है। कहती है, राम राम जी, आपके गार्डन में दो बड़े कोर्जेट लगे हैं आपके किचन गार्डन में, और जिसमें से एक के तो आपने कोफ्ते बना लिए हैं डिनर के लिए, और दूसरे को आप बेक कर रही हैं विद ब्रेड क्रम्स एंड चीज अलोंग विद खुसखुस सैलेड फॉर लंच, और आप मुझे बुला रही हैं। क्या बात है, आपकी ये डिशेस को देखकर मुंह में पानी तो आ रहा है, लेकिन आप विंसर में रहती हैं, एक घर हमारे स्टूडियो के पास ले लीजिए ना, तब जब भी बनाएंगी मैं फौरन आ जाऊंगी। लेकिन थैंक यू फॉर द इनविटेशन, और मजे के साथ खाइए। और इसके अलावा ये मैसेज आया है जितेंद्र धनगर जी आपका। कहते हैं, ऋतु कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, और आप मुझे जब भी समय मिलता है तब सुनते हैं, और आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज आप काम पर नहीं गए हैं और आप शो को सुन रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा गाना लगा दूं जो आपके मूड को फ्रेशन अप कर दे। ओहो, चलिए फिर अगला गीत हिचिन से जीतू धनगर जी के नाम पर ही कर देते हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लीजिए ये गाना हमने जितेंद्र धनगर जी आपके नाम पर किया और हम यही चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फरीदा जी थैंक यू। शमशाद बेगम का गीत आपको बहुत अच्छा लगा। भारती दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मिस्टर इंडिया कह रही हूँ, मदर इंडिया का गाना बहुत पसंद आया।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Laika Radio.
0: चलिए फिर आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं और जो बहुत धूम मचा रहा है। ये सब होने जा रहा है, ये शो है 9th से 12 जुलाई के बीच में एट लंदन्स अवंतिम अपोलो, और जिसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं, राहुल भुच्चर राम बने हैं और तरुण खन्ना ने शंकर जी का कैरेक्टर निभाया है, और कई शहरों में कई विदेश देशों में धूम मचा चुका है। और आप भी इसको जरूर देखने जाइए अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, खास तौर पर अपने बच्चों को लेकर जाइए ताकि उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर श्री राम कौन थे, कैसे थे, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें इतना ज़्यादा देखने का, जानने का श्री राम के बारे में मौका नहीं मिलता, और रावण क्या था, कैसा था, तो ये सारी चीज़ें जब स्टेज पर देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और कलाकार इतने अच्छे हैं कि आई एम श्योर इसे देखने में मज़ा बहुत आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए, कहीं ये मौका हाथ से चलाना जाए।
1: Laika Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: जी, लाल बंगला फिल्म से था ये गाना, और ये गाना जाता है हमारे सारे मुकेश जी के फैंस के नाम पर। और अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी।
1: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो चलिए बात करते हैं कमल जी से। कमल जी बताइए आज क्या अपडेट्स है हमारे लिए।
3: Well, Ritu ji, I'll tell you what, aapne to suna, the World Cup has gone amazing and it's getting better and better. Now, abhi aaj hamara first semi-finals hai. So, first semi-final with Australia against West Indies. Aur Australia unbeaten, West Indies. Agar turn up ho gaye, agar achha khele, to it could be a very, very good game. But it's going to be exciting ke whoever wins is a big prize to get in the final. Or Ritu ji, second final hamara on Thursday, which is going to be another amazing game. It is England taking the South African. So both good sides, England unbeaten, good strong side. So ye bhi mukabla bahut acha hone wala. And the standard, as I've been saying, the cricket or standard of the women cricket, just on the next level, you know, is going to get better and better. Aapko kya lagta aaj kaun jeetega?
0: मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन जीतेगा। मैं ये चाहती हूँ कि जो अच्छा खेले वो जीत जाए बस।
3: अच्छा, जो अच्छा खेले, तो सपोजिंग वेस्ट इंडीज अच्छा खेले और हार जाए तो फिर क्या करेंगे?
0: जो अच्छा खेले
3: तो विनर कहेंगे आप।
0: जो अच्छा खेलेगा वो कैसे हार सकता है?
3: नहीं, बट एनीवे, सो देखो, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक गेम, अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग फॉर द वुमेन क्रिकेट, द टीडब्ल्यू, यू नो, द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। It's honestly grown. Like I said, we had 27,000 people on the weekend for the India game, Australia. So it's going to be bahut acha hoga. Thank you. So we'll look forward to seeing you soon.
0: Thank you. Take care. Bye-bye.
3: Bye.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: तो याद दिला दें कि अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रेवल के पर दुबई की बहुत अच्छी डील चल रही हैं। आप उनसे फोन पर बात कर सकते हैं डील्स के लिए। उन्हें कॉल कीजिए 02085748410 पर, और ये है सब एटॉल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
4: ये है
1: Leica Radio।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, protected.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
2: OMG!
1: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
2: Murder Mystery!
1: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
0: थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड पेमेंट्स Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
5: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: Got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
7: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
8: की जल्दी मच्छी लेकर आए
9: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा
10: नाम परशुराम अधर्म का करता हूँ काम तमाम
8: अरे कहाँ हो तुम
9: हो आलो आलो
10: परिवार उसके लिए चारों धाम बाहर वो है परशुराम
11: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
5: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
12: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अप्रैल फुल फिल्म से था ये गाना। और तोशी जी कहती है कि ये गाना मेरी ओर से ऋतु आपके नाम, कि तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। और तोशी जी मेरी ओर से ये गाना आपके नाम और मेरे सारे लिसनर्स के नाम जो बड़े ही प्यार से मेरा साथ देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अपना समय निकाल कर अपने संदेश भिजवाते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस अब क्या कहूँ, कुछ ही देर में जाने की बेला आने वाली है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: और निर्मल और किरीट जी, आपका भी मैसेज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने क्रिकेट की भाषा में मैसेज लिखा है, कमाल है। रेडिंग में सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए and 162 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 98.1 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica
0: Radio. जी आज का मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। अगला शो लेकर आ रहे हैं बाली ब्रह्म भट्ट। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी, आपसे 10 बजे से लेके 1 बजे तक ढेर सारे गीतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में साथ देने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
5: Hey there, main hoon Bali Brahm Bhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
3: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: वेलकम टू द जंगल।
8: फिल्म बिल्कुल फेक,
7: हमारी फिल्म आर्मी वाली
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
7: स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
10: मैं किस लिए फिल्म में?
8: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
13: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
12: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
13: Also explore 2026 cruises.
12: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
14: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
15: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
16: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
15: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
16: Or sales at leicamedia.co.uk.
17: Lester Mellor is back with exclusive radio partner, Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
18: You know how fans shout at football matches?
19: Oh, wake up!
18: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. Have you noticed the way fans shout at football matches?
19: Oh, wake up!
18: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
18: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
17: Next, Gold Afternoons with Bally Brambat on Leica Radio Midlands.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: Molly Brumbaugh.
1: Hanji, gold afternoon to you. Available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home, and LaikaGold.com. Also available on a Radio Player app. And 358th day of Laika Radio Midlands, जहाँ पे मेरे सब चाहते listeners वहाँ से सुनते हैं from all over Midlands. Midlands वालों नमस्कार, London वालों of course big नमस्कार to you too. अब हम कल्याण जी वीरजी शाह जी को आज याद कर रहे हैं on his 98th birth anniversary. Born on 30th of June 1928, and he passed away sadly on 24th of August year 2000 after quite a long illness. He was 72 years young when he passed away. That was too early, and the industry, the world, we all miss him. Anandji bhai hamesha fondly talks about him. मैंने फ़ोन किया था उनको पूछने के लिए, लेकिन ही वॉज अ लिटल बिट टाइड अप टुडे बिकॉज ऑब्वियसली कल्याण जी भाई की 98th बर्थ एनिवर्सरी पे सारी प्रेस वहाँ पे उनके पास गई है बातें करने के लिए उनकी यादों में. सो what I did was I was thinking कैसा मैं म्यूज़िक आपको सुनाऊँ आज. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद ऑल द पैपी सॉन्ग्स ऑफ कल्याण जी आनंद जी. And from the peppy songs in the second hour, when Kalyan Ji Bhai started solo with a film which was quite a hit musically, and then there was a song, Chahe Paas Ho, Chahe Dur Ho, and that was a hit song in that particular film called Samrat Chandragupt, 1959 ki baat hai. And then इन्होंने clay violin बजाया था हेमंत कुमार जी के लिए. And then there was a film Nagin, उसमें उन्होंने popularize कर दिया था. And there are a lot of stories about it and conflicts भी बहुत है, लेकिन I do believe that he also played the clay violin in the film Madari. तो हम second hour में वो पुराने गाने उनके ढूंढ के निकालेंगे, post box 999. फिर जब से आनंद जी भाई ने ज्वाइन किया उनको, सट्टा बाजार, मदारी, छलिया फिल्म, दूल्हा दुल्हन, हिमालय की गोद में, फिर ये तो जब जब फूल खिले, दूसरी पूर्णिमा फिल्म थी, उपकार, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन गिविंग ऑल द नेम्स टू यू लाइक डॉन, जंजीर, सरस्वती चंद्र, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, ये सब. एंड career, it started in the early 1950s, and then 1975 mein Filmfare Award for Best Music was film Kora Kagaz. To hum unke bare mein sab kuch jante hue unke gaane sunenge, peppy songs this hour, and we shall listen to Kalyan ji Anand ji's songs. Anand ji bhai ne jab se join kiya wahan se gaane. अब तो कल्याण जी आनंद जी के गाने फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में कल्याण जी भाई सोलो, एंड देन टुगेदर एज द ब्रदर्स जॉइंड फोर्सेस एंड मेड हिट्स आफ्टर हिट्स आफ्टर हिट्स. आई विश आई हैड 8 आवर्स टू प्ले ऑल द सॉन्ग्स टू यू, बट देन वी शैल ट्राई टू कवर इट इन द 3 आवर्स, मोस्टली 2 आवर्स, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत थर्ड आवर की. हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज शमशाद बेगम, तो वो भी गाना हम आपको सुनाएंगे. जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वी विल हैव फन फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. That means today is the last day that you can be in to win a £75 voucher every day, that is today, when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: फिल्म है दुल्हा दुल्हन और हम याद कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह, इनकी 98th बर्थ एनिवर्सरी पे वी आर विशिंग हिम लॉट्स ऑफ मेमोरीज दैट ही हैज क्रिएटेड एंड वी आर विशिंग द होल फैमिली ऑल द बेस्ट एंड लॉन्ग लाइफ टू आनंद जी भाई ऑन अ डे लाइक दिस बिकॉज वी आर फॉन्डली रिमेम्बरिंग कल्याण जी भाई. एंड आगे जो गाना है ये गाना इंदिवर जी ने लिखा था, आगे गुलशन बावरा जी ने जो लिखा सुनिएगा.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: महेंद्र कपूर जी की आवाज लता मंगेशकर जी के साथ, फिल्म परिवार 1967 की फिल्म, गुलशन बावरा की लिरिक्स और संगीत ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी. नेक्स्ट सॉन्ग रिटन बाय गुलजार.

0: What a song, eh? And what a composition. Evergreen songs, lilting songs. Sara Patel ji, thank you for your message saying very excited today to listen to the great Kalyan ji bhai. Thank you for this hard work. Yes, not easy choosing 25 songs out of 2,500.
1: The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
0: बोल हैं हम सफर मेरे हम सफर लता मंगेशकर और मुकेश जी ने गाया हुआ फिल्म है पूर्णिमा कल्याण जी आनंद जी का संगीत और लिखा गुलजार साहब ने सुनिएगा एंड नेक्स्ट आवर वी गोना गो बैक यस इट्स गोना बी वेरी नॉस्टैल्जिक नेक्स्ट आवर इतने प्यारे प्यारे गीत चुन के लाया हूं सुनिएगा लुत्फ उठाइएगा मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट आपकी खिदमत में रिमेंबरिंग कल्याण जी भाई ऑन द 98th बर्थ एनिवर्सरी एंड थैंक यू फॉर योर लवली अप्रिशिएटिंग मैसेजेस

0: क्या गाना है ना, गुलशन बावरा ने लिखी लिरिक्स और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, कैसा झूम रहा है आज समा। और आपको मालूम है मैंने सब थिएटर्स के नाम जो लिए, वहां पे लिबर्टी सिनेमा का नाम तो सबको मालूम है। और हमारी भावना जी ने लिखा, बोलते कि पंगानी में जो सिनेमा था, मैंने कहा लिबर्टी सिनेमा, तो हमारे लिबर्टी सिनेमा के आलम भाई हु इज अ ग्रेट लिसनर ऑफ लाइका गोल्ड एंड ही इज ऑनलाइन। एंड मैंने उनको पूछा कि कौन सी फिल्म जिसमें कल्याण जी आनंद जी का संगीत था लगी थी वहां लिबर्टी सिनेमा में। आलम भाई कैसे हो, सलाम।
1: वालेकुम सलाम, हाउ आर यू सर? ठीक ठाक है भाटी साहब?
0: नॉट बैड आलम भाई। मैं यही पूछना चाहता था कौन सी फिल्म लगी थी लिबर्टी सिनेमा में जिसमें कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।
1: फिल्में तो बहुत लगी थी भाई साहब, तो उनमें से एक तो मुझे याद है, सच्चा झूठा सी लगी हुई है।
0: वाओ, राजेश खन्ना।
1: राजेश खन्ना की।
0: अच्छा,
1: राजेश खन्ना की।
0: तो उसमें से कोई गाना आपको याद है, क्योंकि आप तो कंटिन्यूअसली बैठते थे वहां जब शोज चलते थे।
1: जी बस वो थोड़ा टाइम जाते थे अंदर बाहर, फिर आ जाते थे।
0: अच्छा,
1: एक ही फिल्म बार बार देख के थक जाते थे। एक था गाना उसका, दिल सच्चा और चेहरा झूठा।
0: ओ या, मैंने अभी फर्स्ट आवर में जो आपको सुनाया, दिल को देखो चेहरा ना देखो, वही ना। और दूसरा कौन सा गाना था उस फिल्म का, बोलिए ना।
1: ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ये बहुत चला था गाना।
0: एक गा देना, गा देना, गा दो ना आलम भाई, एक लाइन गा दो ना।
1: आवाज बैठी हुई है यार, ठंडा पानी तो
0: बैठे बैठे गले से गा दो, मैं साथ में गाऊंगा, चलो।
1: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया,
0: सच के
1: लेके जाएंगे, पता नहीं आ गया,
0: सच के आएंगे दूल्हे राजा,
1: सच के आएंगे दूल्हे राजा, मेरी प्यारी बनेगी दुल्हनिया, कुछ ऐसे था।
0: शाबाश, मजा आ गया यार। लिबर्टी सिनेमा क्या जगह थी यार, बड़ा मजा आता था। मैंने हम हिंदुस्तानी फिल्म जब आशा पारेख और जॉय मुखर्जी वहां आए थे उस शो में जब फिल्म लगी थी प्रीमियर में, तब मैं लिबर्टी सिनेमा गया था। यस, एज अ छोटा बच्चा चड्डी में।
1: मुझे जो इसी तरह याद है ना, वो राजेंद्र कुमार साहब आए थे।
0: हाँ जी,
1: फिल्म माँ बाप लगी थी।
0: वाओ, क्या मेमोरी है यार।
1: माँ बाप लगी थी, वो आए थे 1950s के बाद, आए थे 60s में समथिंग लाइक दैट।
0: Yes, bebe, iko dugu kabisa, because you are from Jamhuri High School, right? Duke of Gloucester Jamhuri. Yes, he is a Jamhurian. Everybody, this is another Jamhurian, all the way from Nairobi, Liberty Cinema ke Malik. Yippee!
1: Thank you so much.
0: Thank you, Alam Bhaiya. Thank you very much. All the best.
1: Thank you so much. Bye bye. Thank you, sir. Thanks for holding.
0: Bye bye. Thank you. And that was the owner of Liberty Cinema there, you know. And there was, I mean, the whole family used to own it. And Eunice Butchery, you know that, na? Wahan pe Eunice Butchery hoti thi. They were the owners of Eunice Butchery and Liberty Cinema. Yeah.
2: Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410, at all protected.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. Miss your favorite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Laika Radio Midlands when you want. Laika Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Laika Group, home of Laika Radio and Laika Gold.
1: Laika Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
0: Listen back to your favorite shows by logging on to laikaradio.com and selecting Midlands or the mobile app.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या गाना बनाया कल्याण जी आनंद जी ने, रखवाला फिल्म 1971 की। अगला गाना जो है द नेक्स्ट सॉन्ग इज माई पर्सनल फेवरेट, जो मैंने बचा के रखा था, किशोर दा ने गाया है, अरे ओरे 1968 की सुहाग रात फिल्म, लिखा है इंदिवर जी ने। सुनिएगा, लुत्फ उठाइएगा।
1: Like a Radio 90s. Like a Radio Punjabi. Like a Gold 2. Now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: क्या गाना, क्या गाना, ओ माय गॉड, दोनों गाने एवरग्रीन. आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट कुर्बानी, तो ये कवाली तो इज एन एवरग्रीन थिंग. एंड नॉट ओनली दैट, कल्याण जी, आनंद जी, दोनों को याद करते हुए कल्याण जी भाई की 98th बर्थ एनिवर्सरी पे हमने ये गाने सब आपको सुनाए. और दूसरा गाना जो था फिल्म जंजीर का, और जंजीर का सबसे पॉपुलर गाना तो आपको मालूम ही है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी. लेकिन बहुत बार ये सुनाई दिया गया है, तो मैंने कुछ ऐसे गाने चूज किए जो विच आर रेयरली प्लेड काइंड ऑफ थिंग, यू नो. एंड हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज शमशाद बेगम. अब शमशाद बेगम जी ने कल्याण जी आनंद जी के लिए गाया था क्या? ऑफ कोर्स गाया था. फिल्म है ब्लफ मास्टर, उसका गाना मैंने चुन के रखा हुआ है आपके लिए. और आगे जाते हुए हम बात करेंगे हमारे कमल प्रभाकर जी से, टू फाइंड आउट व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन टुडे विद द क्रिकेट मैच, वुमेन्स क्रिकेट अपडेट्स. एंड उसके बाद हम दूसरे दो चार ऐसे कैसे चटपटे गाने आपको सुनाएंगे, इंटरेस्टिंग गाने, जिससे यू'd कीप ऑन टैपिंग योर फीट व्हाइल एज यू हैव डन इन द लास्ट टू आवर्स. यस, अच्छे अच्छे मैसेजेस आए मेरे को, थैंक यू वेरी मच. एंड दिनेश पोपट जी, आपने पूछा कि मुझे पंगानी याद नहीं आ रहा है. यू नो, आप जहाँ नगारा से निकलते थे, एंड नगारा से जाते हुए यू गो डाउन टूवर्ड्स पार्कलैंड, तो पार्कलैंड जाते हुए द फर्स्ट पार्क लेंस जो होती है उसके पहले राइट टर्न आता था फॉरेस्ट रोड का. और फॉरेस्ट रोड के एंड तक पास्ट सिख यूनियन एंड यू एंड अप इन पंगानी एरिया जहां पे लिबर्टी सिनेमा था. वहां से पंगानी के बाद आता था मथारी वैली, दैट्स मथारी हॉस्पिटल, एंड देन थीका, उस रास्ते पे. सो इफ यू डिडंट नो वेयर पंगानी वाज, देन आई हैव जस्ट टोल्ड यू लिबर्टी सिनेमा वाज इन पंगानी. आगे जाते हैं, दिस इज ऑल फॉर वन इंचीज टुडे, आई एम सॉरी दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड माय लिंगो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट देन दिस इज नॉस्टैल्जिया. आई वाज बोर्न इन केन्या एंड आई माय हार्ट रोहयांगुई को उकोटू एंड माय हार्ट इज स्टिल इन केन्या.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124.8 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch. Today is the last day and you can be in to win a £75 voucher today. And when you send over £1,000 and also one gram gold coin when sending over £2,000, TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: So we are into the round of 32. That's the knockout stage. And knockout meaning to say, wow, there are major upsets. Germany out, Netherlands out. And today, Cote d'Ivoire versus Norway. And it's Holland, you know what I mean. And France versus Sweden at 10 p.m. 6 p.m. it's Cote d'Ivoire versus Norway. And 10 p.m. France versus Sweden. And Ratko 2 baje, Mexico versus Ecuador. Now, don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Ye hai Leica Radio.
4: Leica Radio. Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Jemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najik na Asian shops ma. इतना सस्ता डील देखा है कभी
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99 एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99 फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99 लैला बासमती राइस 10 kg 11.99 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99 फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399 पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99 फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1 फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 Street LE12JU या Rowlatt Hill LE54UN.
4: Big deals, big savings while stock last. Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Are you ready to embark on a journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
9: OMG!
8: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
9: Murder Mystery!
8: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk. Exclusive radio partner Lyco Radio.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
11: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर પેરિસમાં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે જ્યાં મળશે શાંતિ ભક્તિ અને આનંદ અને સાથે આઈફિલ ટાવર સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂરનો આનંદ માણો ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બરના મંત્રા હોલિડેઝ કોલ કરો 02033 773 633 મંત્રા હોલિડેઝ વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા
12: બિઝનેસ કે કાર્ડ પેમેન્ટ ચાર્જિસ દેખ કે કભી સોચા હૈ
13: યાર મેં કહીં જ્યાદા તો નહીં દે રહા पता लगाने का एक ही तरीका है अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW पेज को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड विजिट twpays.com/lyca या कॉल कीजिए 02031299840 TW पेज हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत
14: Nun Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
15: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
16: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. assuming you want to get noticed.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने ZTV HD पर।
1: ये है लाइका गो।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: time for Radio Wally to take you out of this world with a Lazy Lounge special. Like a radio.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: Welcome to the jungle.
5: Film बिल्कुल फेक.
4: हमारी फिल्म आर्मी वाली
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
4: और स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
7: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में?
9: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबोथिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है. बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड लाइका 10. विजिट book.robothink.co.uk/laika.
0: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today. You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HartyHanks.com. Harty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HartyHanks.com today.
11: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा.
12: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
0: A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Laika.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी. Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. The greatest Asian love songs across the Laika Radio Network.

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
1: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
0: डेजर्ट सफारी,
1: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
0: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
1: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: Saffold Travel, at all protected.
3: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org, assuming you want to get noticed.
5: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
6: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
5: The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.